शब्द भगत नामदेव दा है जेड़े परमेश्वर नु कहंदे हन तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रूड़ो कहंदे ने सोना ऐ परमेश्वर तेरा नाम बड़ा सोना है रूप रूड़ो तेरा रूप बड़ा सोना है अत रंग रूड़ो बहुत ही सोना ते प्यारा मेरा राम।

प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदू गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओह पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू प्याया, कुछ लोकां नू भी प्याया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे

जिस तरह मारवाड़ देश विच नीर कहिंदे ने पानी, पानी दे नाल लोक प्रीत करदे ने। बेल बालहा कर हला, और जिस तरह ऊ

मान सरोवर हंसला हंस जेड़े ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है चकवी जिस तरह सूर दे नाल

तरनी के औरतनो कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

से खीर बाल हा जिमें बच्चा खीर क्या दुध नू दुध दे नाल प्रीत करदा है चात्रक मुख जैसे जल तरा।

हर था जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए। ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

भगत कबीर बनारस रहा करते सन। किसी ने पूछिया कबीर तेरा गुरु कौन है। कबीर साहब कहन लगे गुरु मैं ता किसी नु गुरु तारिया नहीं ता उसके जिदा गुरु नहीं ओदी गति नहीं हुंदी। कबीर तू गुरु जरूर धारण कर। कबीर साहब कहन लगे फिर गुरु किड़ा है ऐस वेले जेड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे उसनु मैं गुरु धारण कर। ता दसन वाले ने कहा कबीर स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं ओ गुरु तारण दे लायक ने तू उन्हां कोल चलिया जा। पर एक गल है स्वामी रामानंद ऊंची जात दे ने तू है जुलाया नीवी जात दा। स्वामी जी दे चेलिया ने तेनू स्वामी दे लागे नहीं लगन देना। पर एक तरीका है स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने। जे तेनू गुरु दी लोड़ है अमृत वेले उठ जेड़ियां पौड़ियां गंगा दियां स्वामी जी उतरदे ने उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मा पै जा जे तेनू गुरु दी लोड़ है। ए सुन के कबीर साहब कहन लगे ठीक है क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तो स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नू नींदर नहीं आ रही क्योंकि गुरु दी लोड़ है ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो ही गल्ला ने या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नू खुश कर ली। जे ता गुरु नू खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं घर बार तिया पुत्रा माया विच रहंदिया होया परमेश्वर नू याद करना माया विच रहंदिया होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना मोह माया तो उत्ते उठ के रहना ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे मैनू गुरु दी लोड़ है आप अद्धी रात हुई घरों उठे ते गंगा घाट वल तुर पए।

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है, अद्धी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन, कबीर साहब मूह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मे पै गए। इस कथा नूं भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वास्ते

शहीद जाए के लम्मा पया कबीर तिथाई जेड़े रस्ते तू स्वामी जी ने लंघना सी उस रस्ते ते कबीर साहब जाके लम्मे पै गए।

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखिया पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे नहीं।

तीसरे भगत भगत तन्ना जिन्हां बारे भाई गुरुदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

ब्राह्मण कहन लगा जाओ धने कोई मखौल ठाकर तेनू दे दिया तेनू की पता कि मैं पूजा करी दी जाके गवां चार। धन्ना कहन लगा देख पंडता सीधी तरह ठाकुर दे दे नहीं ता मैं दूसरी तरह लवांगा। ब्राह्मण कहन लगा जाट है इन्हें पिछा नहीं छड़ना। कहन लगा चंगा तो ठहर मैं ठाकुर लेके आना एक गोल मोल पत्थर कपड़े विच लपेट के धन्ने नूं दिता अपना पिछा छड़ाने वास्ते। पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नूं गैल छुड़ावे। गैल अपना पिछा छुड़ाया ते लै ठाकुर।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गए। ठाकुर नो

0: पर तन्ना हाथ जोड़दा मिन्नता करदा है मत्थे टेकदा है कहिंदा है परमेश्वर मैं अनपढ़ मैनू ये नहीं पता तेरी अरदास किवें करी दी पर मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना कृपा कर रोटी खा हुण तन्ने नूं की पता के लोग ठाकरां नाल भी ठगी करदे थोड़ी जी चीज पुजारी मूर्ति दे मुंह नूं लगांदा है अद्धी आप रख लैंदा अद्धी घर वाली लै जांदी तन्ना ये समझदा कि पत्थर दीआं मूर्तियां सब कुछ खांदियां ने सब कुछ पीदियां ने इस करके इस पत्थर दे सामने रोटी रख के तन्ना भी बैठा है
1: हाँपी मुना जुठा लेता तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे
0: तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हाँपी मुना जुठा लेता तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हत्थों खाना ते मैं भी जाटा फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल

0: परमेश्वर नू रोटी खुआई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असी खा ली हुण दस तेन चाहिदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेन की चाहिदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दी है। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला

चाहिए क्योंकि जिमीदार सी। पहली चंगी चाहिए, अनाज चंगा चाहिए, ताकि इन चीजा वालों मैं निश्चिंत होके तेरी

गौ भैंस मांगो लावेरी। गौ भी चाहिदी है ते मझ भी चाहिदी है, पर हुण लावेरियां लावेरियां कहिंदे ने दुध देण वाली। मझ भी चाहिदी है, गां भी चाहिदी है, पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण।

कोड़ी नुके ऐ भगवान पैरी सोनी जुती पाई होवे सोना सूट पाया होवे घर विच अनाज भी होवे गां ते मझ भी होवे ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता आना जाना भी पैंदा है दूर इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोनी जी घोड़ी भी दे ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं

उस परमेश्वर दी बंदगी करो। सारयां दी उपालना करन वाला है, तू बंदगी कर, तेरी भी उपालना करेगा। दुनिया दी चिंता छड्ड, नाम दी चिंता कर, क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

0: संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
1: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
0: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर

ओ परमात्मा ओ हरि मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लवे। जिस तरह कोई मूर्ति दी पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बैठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा।

मन विच होमे आ जाती है और भगती दे नाल होमे कटी जाती है। तू ए वरते ले लिया, ओ नारायण तेरे कार पुत्र बन के जन्म लैण, पर बाल के पहचानन दा वर

इस सन्यासी पिता मेहता कालू ऐ बालके तुहाडा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर तुहाडे घर ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदों तक सुवास हन, भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इन्हां दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान होए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक एहो जिहा सुपना है, ये ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव्य मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन, ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है, कि मैं पिछले जन्म विच

जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया, उठ के खड़े हुए अपने आप नु कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्ता लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषां दे नाल भरे है। मंगला चरण दे

पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली

जिथे गुरु साहब जुड़े हैं, भाई मरदाना जुड़िया, होर सत्संगी जुड़े, आज पहला मौका पिता मेहता कालू जी भी ए भी जुड़ गए, अखां बंद हो गई, समाधि लग गई,

मैं तेरे मुंह ते चपेड़ भी कट मारी पर तू उफ ना कीती। ऐ दाता मैनू बख्श लै। ए कहंदे होए पिता मेहता कालू। धन गुरु नानक साहब दे।

खाली एकदम उठ के खड़े हो गए और तन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नू गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है।

दुनिया नमस्कारा कर दी है। वो तन गुरु नानक साहब अपने पिता नु मथा टेकते ने ते सानू उपदेश देते ने कि पुत्र रब क्यों ना बन जावे पर मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। मापिया विच एक वड्डा गुण है, माता पिता औलाद नु

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे हां एक मां बाप अठ धियां पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाए तो वह जड़े अठ धियां पुत्र ने वो एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले तो जब बच्चे वड्डे हो जाते ने वो फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धियां पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जब बुढ़े माता पिता कुछ मंगन तो फिर नौ पुत्र गुए कहते ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

और माता पिता ये जरूर कहना चाहवांगे कि जब बच्चे छोटे होंगे जिथे उन्होंने चंगा खाना देंगे हो चंगा कपड़ा देने की कोशिश करते हो चंगी तो चंगी विद्या देने की कोशिश करते

कई जगह असी गलत हो जाने हैं, क्योंकि जे असी नेक काम नहीं करते बुराइयां करते हैं तो फिर बच्चियां तो असी चंगे काम की किवें उम्मीद कर सकांगे। असी आप भी चंगे होइए और बच्चियां नूं भी चंगी सिख्या देइए ताकि स्वर्ग लभण की लोड़ ना पवे।

परम सत्कार कुशासन। सतगुरु जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दे सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ये नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा है जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाईए। दवाई लैके आ गए, डाक्टर कोल गए, डाक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै इस नू खा आराम आ जाएगा। डाक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डाक्टर कोल भी गया, डाक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए दवाई ते खाधी नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ती असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं ते दुख किवें दूर होवे? दवाई खाधे बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नाश होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है, पर घटो घट सानू ये ते चाहिदा है ना कि जिद कोल कुछ लैना है उहदे नाल मन ते जोड़ी, उहदी बाणी ते मन विच वसाईए। आम लोकी ये सोचते ने तीर्थ यात्रा ते जाओ, एक वारी इशनान कर लो ते सारे पाप खत्म हो जांदे, पर गुरु साहब जी कहंदे ने नहीं, मिले जे तीर्थ नातिया डड्डा जलवासी। जे तीर्थ ते नहाण दे नाल ही सारा कुछ मिल जांदा है, फिर मच्छियां डड्डू जिहड़े पानी विच रहिंदे ने इह मुक्त क्यों ना हो गए? सानू तीर्थां ते जाण दा ते पता है, पर जाना किस तरह है इह नहीं पता, नहाणा किस तरह है इह भी नहीं पता। साहिब जी उपदेश करदे हन, काया अंदर अमृत सर साचा,
ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਨਾਵੈ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ ਹੈ। ਨਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਨਾਵੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਾਵੈ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਬਗੈਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है, पर किस तरह? आठ पहर आराधी, अठे पहर उदी आराधना करिए, उदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नाश होवेगा। डॉक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दित्ती है। ए ना होवे कि दो खुराकां खा के ते फिर छड्ड देवे कि थोड़ा जिहा आराम ते आ गया है, हुण दवाई दी की लोड़ है। दवाई खाई जानी है जदू तक पूरी तरह आराम नहीं आता। एक बार करो रसना पवित्र, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। अज वो पवित्र दिहाड़ा जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक बारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहरदे, संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगतां आईयां, एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिथे गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहे। लाल चंद दर्शन करन आया, गुरु हर कृष्ण साहब नु देखिया।

पंडित लालचंद ने गुरु साहबां नूं कहा महाराज इहदे कोल गीता पढ़वाओ। सतगुरु जी हस पए ते हस के कहन लगे लालचंद बड़ा चतुर निकले, बड़ा सियाना निकले, वादा ते करके गया सी उनू लियावांगा जिन्हें गीता कदी पढ़ी नहीं, पर उनू लेके आया है जिहड़ा बोल ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इन्नी गल कह के फिर सतगुरु देख दे छजू चीवर वाल हन ते कहंदे लालचंद नूं ने चंगा लालचंद जिन्नू भी लैके आ गया ये गुरु नानक का घर ऐसा है इत्थे जिहड़ा जैसी भावना लैके आंदा है उसनू ओहो जिहा फल मिलदा है। तेरी इच्छा है इहदे कोल गीता सुननी ते गुरु नानक तेरी इच्छा पूरी करेगा। गुरु साहबां दे हाथ विच हमेशा एक छड़ी हुंदी सी खूंडी, ओ खूंडी गुरु साहबां ने छज्जू चीवर दे सिर ते रखी मेर भरी निगाह दे नाल छज्जू चीवर वल तकिया ते मुस्कुरा के कहंदे ने छज्जू ओ भाई सिखा पंडित जी दी इच्छा है के तू गीता सुनावे। भाई सिखा इन्हां दी इच्छा पूरी कर पर सुन कली गीता पढ़नी नहीं नाल श्लोकां दे अर्थ भी करके दसने हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद गुरु दी मेहर दी नजर होई सिर ते गुरु साहबां ने अपनी छड़ी रखी ते ओह छज्जू चीवर जिहदे मुंह विचों लारां वगदियां सन वाल खिलदे शरीर दी सुध नहीं रंग ही बदल गया गुरु दी शोभ मिली चेहरा ही होर हो गया जिहदे मुंह विचों लारां वगदियां सन बैठा दरबार विच इधर उधर झाकदा सी जिवें बावरे शदाई बैठे हुंदे ने हुण रंग ही होर हो गया। हाथ जोड़ के परे दरबार विच खड़ा होया और फिर चरना ते मत्था टेकिया और फिर मत्था टेक के फिर खड़ा होया हाथ जोड़े ते कहन लगा दाता तेरा शुक्र है तू मैनू नवा जीवन दिता है शरीर दी सुध दिती दुनिया दी सुध दिती दुनिया दी सोझी दिती ते पातशाह हुण हुक्म कर। साहब जी कहन लगे छज्जू गीता पढ़ के सुना नाले अर्थ करके सुना ते छज्जू चीवर कहंदा दाता हुण ते तेरी मेहर हो गई है हुण ते तू हुक्म कर ए गीता ते की सारी कायनात पढ़ के सुना दें। आखो सतनाम श्री वाहे सारी दुनिया दा हाल दस दें इतनी तेरी मेहर हो गई। ते छज्जू चीवर पंडित दे सामने बैठा गीता पढ़दा है नाल श्लोक दे अर्थ कर करके दसदा है ओ ज्यो ज्यो गीता पढ़दा है ते पंडित लाल चंद कोल बैठा रोई जांदा ज्यो ज्यो सुनदा है अखां विच अथरू डिगदे हन। ते जद गीता दी ए सारी कथा दा भोग पया ते लाल चंद हुण उठया भज के चरण पकड़े और चरणा ते सिर रख के ज्यों रोण लगा कहन लगा महाराज मैनू खिमा कर
मैं भूल गया तेरा प्रतावा लैण आया, असि औगण आ रहे तेरा प्रतावा लैने। सतगुरु कहंदे ने लाल चंद रो ना उठ, ओ लाल चंद तेरे सदका एदे भी भाग जाग पे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। और अज भी हरियाणे दे विच ए पंजोखरा साहब गुरुद्वारा इस घटना की याद अज भी दवांदा है। और जेड़े लोग उते श्रद्धा भावना नाल जांदे हन उन्हां दी मनोकामना अज भी पूरियां होंदियां। और फिर गुरु साहब दिल्ली गए, समा समाप्ति दा हो गया है, इतिहास काफी लंबा है पर समा इतना नहीं। दिल्ली जद महामारी फैली, हजारां लोग मरण लगे, तां उस वक्त गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने अपने चरण धो के चरण पौल दिती और उहदे नाल इह जिहड़ी बीमारी सी दूर होई। और अज भी देखो कदी दिल्ली जाओ, जिन्हां हाली दर्शन नहीं कीते गुरुद्वारा बंगला साहब, अज भी उत्थे अमृत दे सोमे उसे तरह पे चलदे हन। और अज भी जिहड़े श्रद्धा नाल जांदे हन उहनां दे दुख दूर होंदे ने। ते जिहड़ियां भी संगतां जाके मत्था टेकदियां ने अपने आप उन्हां दे मुंह तों निकलदा श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। आओ शब्द दी आखरी पंक्ति पढ़ के इत्थे करिए समाप्ति। और हुण समां ते तकरीबन हो ही चुका है, 7:10 तों 8 बजे तक दशमेश दरबार हाजरी भरनी है। और कल 7 to 8 इसे स्थान ते फिर आपां सारे गुरु जस करांगे। आओ आखरी पंक्ति सारे रल के पढ़िए।

की अचरज अच्छा कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाए अभिमान, साध के संग प्रगटाए सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु महे समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस से नहीं बैर, साध के संग न भीगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजाय सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसाय थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नितान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उतारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब ख्याने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची।

0: हे संसार ताप हरने करना मैं सब दुख हरो।
1: नानक शरण पर्यो दुख भंजन, दुख

अरुणालय है, अर्थालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरु।

एक सपना है। हजूर बाणी विच भी बख्शिश करदे हन, सुपने छेती चित मूर्ख लाया। ओए मूर्खा, कदी सुपने भी सच्चे होए हन? सोच ए संसार भी सुपना है, जितने तियां पुत्र धन दौलत महल मारियां, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए ए सुपना है, सुपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हन कि श्वासां नूं सिमरन दी माला बना, श्वास श्वास हर नाम जप, बिरथा श्वास मत खो, क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो। किसे नूं की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु, इस तो अगला श्वास आना कि नहीं आना इसका किनू पता है। इसलिए हजूर बख्शिश कर देखन भाई, सास ग्रास बंदगी कर, श्वासा का कोई पता नहीं। एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा, सारा परिवार आके बेनती करन लगा, बाबा जांदियां जांदियां कोई चंगी सुमति दे जा। ए बुजुर्ग बाबा कहन लगा, मैं अपनी होंद विच अपने जीवन विच तुहानू लखां ही कमा के दिते हन, हुण मेरे श्वास समाप्त हो गए हन, ते कुछ खर्च करके कुछ पैसे दे के ते श्वास लियाओ तो मैं तुहानू सुमति दे सकदा, पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लईयां। आख्या बाबा ए श्वास तो किसे भी कीमत तो मुल नहीं मिलते। फिर ए बुजुर्ग कहन लगा, फिर यही उपदेश है कि इना अमोलक श्वासा दे नाल नाम दे लाला दे वणज करना, तुहाडा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी तनता दे योग हो जाएगा। ऐसा ना होवे ए लाल गुआच जान ते फिर तू लभदा फिरे, ए लभण वाले नहीं हन।